0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে,
2: নমস্কার কলকাতা,
1: নমস্কার কলকাতা।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

नमस्कार, आपने ट्यून किया 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक का, जहां मैं देवजानी आप सभी का स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहाना तो बना ही दिया है, ऐसे खुशनुमा पल में अगर साथ और दिलचस्प बातों का, काम की जानकारी हो साथ और मुस्कान बिखेरने वाली गपशप भी, तो मजा कुछ और ही है। इसलिए चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बारिश की रिमझिम के साथ जुड़े रहिए एफएम रेनबो पर, क्योंकि शुरू हो चुका है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप।

सुन रहे 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, मैं हूं देवजानी, आप सभी सुनने वालों के साथ 10:14 और 40 सेकंड्स। कोलकाता के लिए मौसम कहा

अगले 24 घंटों के लिए। आसमान में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री। हवा में नमी का अधिकतम स्तर 95% और न्यूनतम 68%। ये कल के दिन का हाल था। और आज अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री रहने की संभावना है। कल सुबह से आज सुबह तक, यानी कल सुबह 6:30 से आज सुबह 6:30 तक 2.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के मछुआरों के लिए फिलहाल कोई भी मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो सुन रहे थे मौसम का हाल, और इसी के साथ ही साथ आप अपने आज के दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। रविवार का दिन है आखिरकार, और सभी ने कुछ ना कुछ प्लान बना रखा है। जी हाँ, वही डायलॉग।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे। जी हाँ, एक चुटकी नुस्खे यानी कि कुछ बातें चटपटी सी, मजेदार सी पर इंटरेस्टिंग सी, और वो बातें जो काम की बातें हों। बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी फुहारें तो लाता ही है, लेकिन रसोई में एक छोटी सी परेशानी भी छोड़ जाता है। नमी की वजह से मसाले अक्सर गुठली बन जाते हैं और उनमें फंगस जल्दी लग जाते हैं, और साथ ही साथ उनका स्वाद खुशबू भी प्रभावित होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय जो आपके मसालों को बरसात में भी सूखा और ताजा बनाए रखेंगे। मसालों को हमेशा अच्छी तरह बंद होने वाले कांच या एयरटाइट डब्बों में रखें। मसाले निकालते समय सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें, गीला चम्मच नमी बढ़ा देता है, और जहां तक हो सके हाथों के इस्तेमाल से बचें। हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर जैसे मसालों के डिब्बों में थोड़े से कच्चे चावल के दाने या फूड ग्रेड सिलिका जेल का पैकेट अगर उपलब्ध हो तो रखा जा सकता है। ये अतिरिक्त नमी सोख लेते हैं। मसालों को गैस चूल्हे या सिंक के बिल्कुल पास न रखें, क्योंकि यहाँ भाप और नमी अधिक होती है। अगर मसाले थोड़े नम हो जाएं तो उन्हें कुछ देर तक साफ थाली में फैलाकर पंखे की हवा में या हल्की धूप में सुखाकर या फिर माइक्रोवेव में कुछ एक सेकंड्स रखकर फिर ठंडा करें, सुखा लें और डिब्बे में भर दें। तो बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाइए और बरसात में भी अपनी रसोई के मसालों का स्वाद और खुशबू बरकरार रखिए। फिर मिलेंगे एक चुटकी नुस्खे में किसी और दिन। सुनते रहिए, साथ रहिए।
2: एक चुटकी नुस्खे।

0: जलियान भी। 1877 में पहला विंबलडन पुरुष टूर्नामेंट 27 वर्षीय अंग्रेज खिलाड़ी स्पेंसर गॉ ने उद्घाटन टूर्नामेंट जीता। 1903 पहला टूर डे फ्रांस फ्रांसीसी राइडर मॉरिस गैरे ने उद्घाटन प्रतियोगिता जीती थी। 1967 में अमेरिका ने चंद्रमा की कक्षा के लिए एक्सप्लोरर 35 का प्रक्षेपण किया था। 1969 में अपोलो 11 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है आज के ही दिन। 1976 में ब्रिटिश रॉक बैंड डीप पर्पल का बंटवारा हो गया। 1979 निकारागुआ मुक्ति दिवस, आज के ही दिन सैंडिनिस्ट्स ने पदभार ग्रहण किया था। 2020 में अरब देशों का पहला अंतरग्रहीय मिशन मंगल ग्रह के लिए होप ऑर्बिटर जापानी H2A रॉकेट पर सवार होकर तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 2023 वैज्ञानिकों ने धातुओं में दरार पड़ने और फिर से जुड़ने का अवलोकन करने के बाद पाया कि धातुएं स्वयं ठीक हो सकती हैं, जिससे भविष्य में स्वयं ठीक होने वाली संरचनाओं और वाहनों का मार्ग प्रशस्त होता है। में आज के ही दिन जन्म हुआ था आग्नेयास्त्र निर्माता और उद्योगपति सैमुअल कोल्ट का, जो मशहूर हैं कोल्ट 6-शॉट रिवॉल्वर के निर्माता के रूप में। 1827 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में भारतीय सिपाही मंगल पांडे का जन्म हुआ था आज के ही दिन नगवा बलिया जिले में। 1863 में कवि नाटककार और गीतकार दीजेंद्र लाल रॉय यानी डीएल रॉय का जन्म कृष्णनगर में हुआ था। 1938 में भारत के महाराष्ट्र में भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत नार्लिकर का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध हैं हॉयल नार्लिकर सिद्धांत के जनक के रूप में। 1955 में रॉजर बिनी यानी भारतीय क्रिकेट के मध्यम गति के ऑलराउंडर, इनका जन्म हुआ था बेंगलोर कर्नाटक में। आज अपना जन्मदिन मनाते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, 1976 में लंदन में जिनका जन्म हुआ था और जो फेमस है प्रसिद्ध है शर्लक होम्स के किरदार को निभाने के लिए। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं श्रीलंका के क्रिकेटर दिलहारा फर्नांडो भी, जिनका जन्म 1979 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। और साथ ही साथ आप, जी हाँ, अगर आज आप मना रहे हैं अपना जन्मदिन, तुम्हारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू टू।
1: आज के दिन थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। Non-stop Gupshup 107 FM Rainbow Par Non-stop Gupshup Non-stop Gupshup 107 FM Rainbow Par FM Rainbow Par FM

0: और देखते ही देखते हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और आखिरी सेगमेंट की बारी है। सुन रहे हैं आप 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप देवजानी के साथ।
1: कोलकाता कल्चर।
0: जी हाँ, कोलकाता कल्चर। और यहाँ हम बातें करते हैं कोलकाता शहर में इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं आज, उस विषय पर। बहुत सारे प्लेज यानी नाटक हैं जिन्हें आप देख सकते हैं आज 19 जुलाई एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में हुलुस्थुल और साथ ही साथ जॉम्बी ओ नामेर जोनो, इस नाम से मधुसूदन मंच, तपन थिएटर में स्वर्ण शिखर। इसके साथ ही साथ कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग इवेंट्स भी हैं हमारे आसपास। आजकल आप अपने दिन को उस तरह से प्लान कर सकते हैं। टॉप सीक्रेट कॉमेडी शो आज शाम, किसी को बताना मत, फीचरिंग अनुभव सिंह बस्सी। ये भी एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है आज। और इसके साथ ही साथ द लेट नाइट कॉमेडी शो लाफिंग हाइना कॉमेडी

0: जय वी जॉय, अ पॉलिटिकल स्टैंड अप कॉमेडी शो आज के ही दिन, और कई सारे ओपन माइक सेशंस भी हैं आज के ही दिन, तो आप इनमें से किसी में भी शामिल हो सकते हैं अगर बारिश को कॉम्बैट कर सके तो ही।
1: कोलकाता कल्चर।

तो दोस्तों आज का नॉन स्टॉप गपशप यहीं तक। बाहर अगर बारिश हो रही है तो उसका आनंद जरूर लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प बातों और काम की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी देवजानी को इजाजत। सुनते रहिए FM रेनबो, हमारे साथ बने रहिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

वाह दोस्तों, क्या था ये गीत, बिल्कुल मन को सुकून देने वाला। क्योंकि संडे की ये दोपहर और बाहर कुदरत का ये हसीन नजारा, जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ रविवार का वो सुकून जहां सुबह अलार्म की कोई झंझट नहीं था, और दूसरी तरफ आसमान से गिरती ये मखमली बूंदे जिसने पूरे शहर के मौसम को एकदम सुहावना बना दिया। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में, यानी कि आपका अपना शो कार्यक्रम तीन का तड़का में। और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, आपके संडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। तो वैसे तो दोस्तों, रविवार का मतलब होता है चिल करना, लेकिन जब संडे के साथ इस कदर बारिश का तड़का लग जाए तो फिर बिस्तर छोड़ने का मन किसी का नहीं करता। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मौसम खुद हमसे कह रहा हो, ठहर जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ और इस सुकून को जी लो। कहीं ना कहीं ये मौसम कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए सारी टेंशन वेंशन भूल जाओ, सिर्फ आज के लिए, आज के लिए अपनी सारी दिनचर्या में थोड़ा सा पॉस्क लगा दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आज दोपहर दिन का तड़का में, यानी कि तीन का तड़का में, जी हाँ बिल्कुल, कोई भाग दौड़ नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की जो हमें सिर्फ एक संडे की बारिश में मिलती है, जैसे कि पुराने गानों की प्लेलिस्ट प्ले करना, या फिर बालकनी में खड़े होकर इस ठंडी हवा को महसूस करना। तो दोस्तों, जो जहां है जैसा है बस वैसा ही रहने दीजिए, बस इस खूबसूरत रविवार को एंजॉय कीजिए, आपके इस हसीन मिजाज को सुरों से सजाने के लिए बिल्कुल आज का ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, और इस गीत को सुनते ही सुनिए और साथ ही साथ मुस्कुराइए।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। साथियों, किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर बने। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जब आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, तब देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एससी एसटी वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ग्रीनफील्ड परियोजना का अर्थ है ऐसा नया उद्यम जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं या व्यापार से जुड़ा हो। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी और एक एससी या एसटी उद्यमी को ऋण देना अनिवार्य किया गया है। इस ऋण में परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं लगानी होती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। ऋण की अदायगी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक होती है और इसमें कार्यशील पूंजी की भी सुविधा मिलती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की एक खास बात यह है कि इसमें केवल ऋण

0: ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की है ताकि उद्यमी सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना में से लाखों महिलाओं और युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप या आपके आसपास कोई महिला एससी या एसटी वर्ग से है, संबंधित व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में अवश्य जानकारी दें।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

बिल्कुल दोस्तों, ये जो बारिश है इसकी यादें कहीं ना कहीं अभी भी हमारी यादों में है। और साथ ही साथ दोस्तों, बाहर हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है और शहर की सड़कों पर मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू फैल चुकी है। यानी कि जब ऐसे रिमझिम बारिश हो तो दोस्तों हमारे मन में यानी कि तड़का लगना तो बन ही जाता है, यानी कि हम अपने आप ही लगा लेते हैं। क्योंकि वक्त भी हो चला है अब कड़क अदरक वाली चाय का। अब सोचिए हाथ में वो कड़क अदरक वाली चाय का कुल्हड़ और पुरानी यादें हो बस। और ये बारिश ना दोस्तों बिल्कुल टाइम मशीन की तरह होती है, क्योंकि ये जैसे ही ये बूंदे गिरती है ना, हमें बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब बारिश होते ही हम दुआ करते थे कि आज स्कूल बंद हो जाए, वो कागज़ की नाव बनाना, पानी के गड्ढों में छपाक से कूदना, कितनी छोटी छोटी खुशियाँ थी ना। पर आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, पर सच बताना आज भी इस ठंडी हवा में खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की लेने का जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी महंगे कैफे में नहीं मिलता। दोस्तों मैं भी यही चाहती हूँ कि दोपहर जो है यही ठहर जाए, पर वक्त तो आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ बेहतरीन म्यूजिक भी। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं। फिलहाल दोस्तों बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 3:32 और 15 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107.8 FM।

FM रेनबो पर। और दोस्तों, बातों और गीतों का यह सिलसिला चलने वाला है ठीक शाम के 4 बजे तक, तो यूं ही मेरे साथ बने रहिए और प्यारे से संगीत का, जी हाँ, आनंद उठाते रहिए।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो।

उधर सब ये सुन रहे थे मीका सिंह और भव्या पंडित की आवाज में फिल्म सन ऑफ सरदार से, और इस गीत के बोल लिखे थे सभी रंजन और संगीत से पिरोया था हिमेश रेशमिया ने। और इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 3:41 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के

0: सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: तो दोस्तों, आप ये गीत सुन रहे थे नीरज श्रीधर की आवाज में, फिल्म तुम मिले का ये टाइटल ट्रैक था। और इस गीत के बोल लिखे थे कुमार ने, संगीत से पिरोया था प्रीतम ने। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बता दो कि स्टूडियो में समय हो चला है 3:54 और 26 सेकंड, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि हमारा साथ फिलहाल इतना ही है। जी हाँ, क्योंकि ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ चला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये धुन, ये मधुर यादगार और दिलकश गीतें आपके दिन को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। संगीत की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों, क्योंकि ये कभी पुरानी यादों से रूबरू कराता है, तो कभी आज की धड़कनों से जोड़ता है, और कभी आने वाले कल के सपनों को नई उड़ान देता है। तो दोस्तों, आज का ये संगीतमय सफर आपको पसंद आया होगा, मैं ये आशा करती हूँ। फिलहाल दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति, पर आप कहीं मत जाइए, आप यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर 5:15 पर कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, यहाँ नहीं 100.1 FM गोल्ड पर। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, जहाँ हर पल आपका साथ निभाते रहते हैं सुर, संगीत और शब्द, तो दोस्तों इसीलिए इन्हें भी अपना साथी बनाकर रखिए, क्योंकि अपने परिवार के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, पर हाँ, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, बस थोड़ी देर के बाद ही सही मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी कार्यक्रम चैनल क्लासिक्स में 100.1 FM गोल्ड पर। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपने दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: यादों की बारात।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं छायालोक और अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट यानी कि यादों की बारात का। इस सेगमेंट में हम आपको हिंदी सिनेमा के इतिहास के उन सुनहरे पन्नों तक लेकर चलते हैं जो किसी खास तारीख से जुड़े हैं और हर तारीख अपने साथ कई यादें समेटे होती है। कहीं सदाबहार गीतों की महक, तो कहीं बेहतरीन कहानियों का जादू, तो कहीं ऐसे कलाकारों का अभिनय जिन्होंने दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों, आज की तारीख है 19 जुलाई, यानी कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह दिन भी बेहद खास माना जाता है। इस दिन अलग अलग वर्षों में ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने अपने अलग अलग अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्ष 2013 में रिलीज हुई रोमांटिक पारिवारिक फिल्म रमैया वस्तावैया

और वर्ष 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड न्यूज की। तो आइए यादों की इस खूबसूरत बारात का पहला पड़ाव शुरू करते हैं इस मधुर तराने से।

तो दोस्तों साल 2013 बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों के दौर अपने पूरे रंग में था। बड़े पर्दे पर हर तरह की कहानियां आ रही थी, लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने सादगी, पारिवारिक मूल्यों और सच्चे प्रेम की खूबसूरत कहानी सुनाई। ये फिल्म थी रमैया वस्तावैया। और इस फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर कोरियोग्राफर, अभिनेता और निर्देशक प्रभु देवा ने। दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपार सफलता हासिल करने के बाद प्रभु देवा ने हिंदी फिल्मों में भी निर्देशन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। और ये फिल्म रमैया वास्तवैया में उनकी ये उन फिल्मों में शामिल है जिसमें उन्होंने मनोरंजन के साथ भारतीय पारिवारिक संस्कृति को भी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। फिल्म से निर्माता कुमार तौरानी के बेटे गिरीश कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा, जबकि उनके साथ मुख्य भूमिका में थी श्रुति हसन। और ये जोड़ी नई जरूर थी, लेकिन पर्दे पर दोनों की मासूमियत और केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आई। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि प्रेम केवल खूबसूरत बातें करने का नाम नहीं होता है, बल्कि उसके लिए त्याग, धैर्य और जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी होता है। और ये फिल्म इसी भावना को बड़े सहज और दिल को छू लेने वाले अंदाज में प्रस्तुत करती है। जी हाँ, फिल्म का शीर्षक भी अपने आप में बहुत खास है, रमैया वस्तावैया। तेलुगु भाषा की एक लोकप्रिय वाक्यांश जिसका अर्थ है कि रमैया, क्या तुम वापस आओगे। अब पुराने हिंदी फिल्म संगीत के शौकीनों को याद होगा कि फिल्म श्री 420 का ये मशहूर गीत यानी कि रमैया वस्तावैया आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इसे शीर्षक को इस फिल्म के लिए अपनाया गया, जो अपने आप में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक खूबसूरत पुल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

देखते हुए इस कहानी के विषय में बताती हूँ मैं, क्योंकि फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन में रहने वाले खुश मिजाज और बेफिक्र युवक राम से। राम अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने भारत आता है। शादी का माहौल, ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों की चहल पहल और गांव की सादगी, जी हाँ, इन सब के बीच उसकी मुलाकात होती है सोना से। और पहली मुलाकात में हल्की फुल्की नोक झोंक, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वही दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यही से शुरू होती है असली इम्तिहान। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो गीत है, जो अभी अभी आपने सुना, ये केवल प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच के धीरे धीरे पनपते विश्वास और अपनत्व की खूबसूरत एहसास भी है। सच कहा जाए तो इस फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं फिल्म रमैया वस्तावैया की। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां राम और सोना एक दूसरे से अपने दिल की बात कह चुके हैं। लेकिन हर प्रेम कहानी की राह आसान नहीं होती, और इस कहानी में भी एक ऐसी परीक्षा उनका इंतजार कर रही होती है जो उनके रिश्तों की असली कसौटी बनने वाली है। तो दोस्तों, सोना के बड़े भाई को अपनी बहन की खुशियों की चिंता है, लेकिन वह चाहता भी है कि जो भी उसकी बहन का जीवन साथी बने वो केवल प्यार की बातें ही ना करे, बल्कि मेहनत, जिम्मेदारी और परिवार की अहमियत को समझे। इसलिए वह राम के सामने एक चुनौती रखता है और कहता है कि अगर राम सचमुच सोना से प्यार करता है तो उसे गांव में रहकर एक किसान की तरह मेहनत करनी होगी, खेतों में काम करना होगा, पसीना बहाना होगा और यह साबित करना होगा कि वह हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है।

तो दोस्तों अब राम, जिसने अब तक आराम और सुविधाओं से भरी जिंदगी देखी थी, इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और यहीं से फिल्म एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब ये केवल प्रेम कहानी नहीं रह जाती है, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और बदलाव की कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:24 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चालक के सेगमेंट यादों की बारात अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों, बात और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

श्रोता साहब, आपने सुना फिल्म का ये भावपूर्ण गीत। फिल्म के गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। यही वजह है कि रमैया वस्तावैया का संगीत आज भी श्रोताओं के बीच लोकप्रिय है। और अगर अभिनय की बात करें तो गिरीश कुमार ने अपनी पहली फिल्म में एक सादगी भरा और ईमानदार अभिनय करने की कोशिश की। वहीं श्रुति हसन ने सोना के किरदार में मासूमियत और आत्मविश्वास का सुंदर मेल दिखाया। फिल्म में सोनू सूद ने सोना के बड़े भाई का किरदार निभाया और ये भूमिका फिल्म की रीढ़ कही जा सकती है। उनका किरदार कठोर जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसके हर निर्णय के पीछे अपनी बहन के लिए चिंता और स्नेह छिपा होता है। इसके अलावा विनोद खन्ना, पूनम ढिल्लो और अन्य कलाकारों ने भी अपने अनुभव से फिल्म को मजबूती दी। और दोस्तों, जब फिल्म का यह गीत अपने रिलीज के समय युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय हुआ था, हल्के फुल्के संगीत और रंग बिरंगे फिल्मांकन ने इसे पार्टी गीतों की सूची में भी शामिल कर दिया था। और फिल्म के संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर ने। और दोस्तों, इस फिल्म के जो गीत है रिलीज होते ही श्रोताओं की जुबान पर चढ़ गए, खासकर जीने लगा हूँ। जी हाँ, यह गीत आज भी रोमांटिक गीतों की पसंदीदा सूची में शामिल

किया जाता है। फिल्म की एक और खासियत थी इसकी लोकेशन, हरे भरे खेत, गांव का शांत वातावरण, पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट और भारतीय संस्कृति की झलक, इन सब ने फिल्म को एक अलग पहचान दी। निर्देशक प्रभु देवा ने केवल प्रेम कहानी नहीं दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है रमैया वास्तवैया, हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों, त्याग और समर्पण से साबित होता है। यही संदेश इस फिल्म को आज भी खास बनाता है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादों की बारात।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यादों की बारात।

इस फिल्म से सुन रहे थे। जी हाँ, करण की आवाज़ में। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कॉमेडी और रोमांस पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन बैड न्यूज़ की कहानी एक ऐसे विषय पर आधारित है जैसे हिंदी फिल्मों में बहुत ही कम दिखाया गया है। फिल्म एक दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति हेट्रोपैट्रनल सुपरफेंगडेंशन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस दुर्लभ स्थिति में जुड़वा बच्चों के जैविक पिता अलग अलग हो सकते हैं। इसी अनोखे विचार को मनोरंजक अंदाज में फिल्म की कहानी में पिरोया गया है। निर्देशक आनंद तिवारी ने इसे संवेदनशील विषय को हल्के फुल्के हास्य और भावनात्मक पलों के साथ प्रस्तुत किया। और दोस्तों, भी आप जो ये गीत सुन रहे थे, जी हाँ, चर्चित गीत तौबा तौबा, ये रिलीज के साथ ही ये गीत बहुत ही छा गया था और खासकर विकी कौशल के डांस स्टेप्स और उनकी ऊर्जा को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तो दोस्तों, विकी कौशल का किरदार इस फिल्म में आत्मविश्वास से भरा, चुलबुला और मजाक किया है। वहीं एमी विर्क अपनी सहज कॉमिक टाइमिंग से कई दृश्यों में मुस्कान बिखेरते हैं। और तृप्ति डिमरी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो अचानक आई एक असामान्य परिस्थिति का सामना समझदारी और संवेदनशीलता से करती है। तीनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है, क्योंकि यह फिल्म केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। यह फिल्म हमें यह भी बताती है कि जीवन कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने ला देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे समय में रिश्तों की परीक्षा होती है और समझदारी, सम्मान तथा संवेदनशीलता ही सही रास्ता दिखाती है। इसी संदेश को फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में दर्शकों तक पहुँचाती है। तो दोस्तों, 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई बैड न्यूज ने यह साबित किया कि अगर कहानी नई हो, कलाकारों का अभिनय दमदार हो और संगीत दिल को छू जाए तो दर्शक उसे जरूर अपनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: जन्म।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों, आज की यादों की बारात में हमने 19 जुलाई को रिलीज हुई दो फिल्मों यानी कि रमैया वस्तावैया और बैड न्यूज़ के बारे में जाना। एक और जहां रमैया वस्तावैया ने सादगी, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों की खूबसूरती कहानी पेश की, तो वहीं बैड न्यूज़ ने नए विषय और हल्के फुल्के हास्य के साथ आधुनिक रिश्तों की एक अलग तस्वीर दर्शकों के सामने रखी। दोनों ही फिल्मों ने अपने अपने दौर में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अपनी अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, इन्हीं सुनहरी यादों के साथ अब यादों की बारात में मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है कि हिंदी सिनेमा के इस यादगार सफर ने आपको भी बीते वर्षों की खूबसूरत फिल्मों से एक फिर एक बार रूबरू कराया होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट रंदोज ज्योति अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मुलाकात होगी छायालोक के अगले अंक में, जहाँ फिर सजाएंगे हिंदी सिनेमा की यादों की एक नई बारात। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 107 FM रेनबो। लेकिन दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ठीक 8:02 से हमारी अगली अनाउंसर आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो जाएगी आपकी फरमाइशी गीतों की लड़ी लेकर। जी हाँ, हमारी अगली अनाउंसर संचिता नंदी का इंतजार कीजिए और अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधु तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।
2: यादों की बारात अभी थमी नहीं, दिलों में गूंज अभी रुकी नहीं। अब बारी है आपकी फरमाइश की, सुनिए अपनी पसंदीदा आवाज। जो गीत छुपे थे यादों की गली में, वो सब बजेंगे आपकी सदा से। तो मोबाइल उठाइए दोस्तों, नंबर है 2213-1341 और अपना गीत किसी के नाम करें। स्वागत है आप सभी का फरमाइशी महफिल में, जहां हर धुन है आपके दिल की कहानी। छायालोक के अंतर्गत इस फरमाइशी गीतों का जो ये कार्यक्रम है, आज से 9 बजे तक आप रहेंगे संचिता के साथ, यादें रहे साथ, फरमाइश बने रंग। सुनिए अब गीतों की जुबानी, आज रात 8 से 9 मेरे साथ यानी संचिता के साथ। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस गीत से अरिजीत सिंह की आवाज, तुम बिन

0: ए दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है और आपका हमारा प्यार इसी तरह बरकरार रहे। मेरे साथ इस वक्त कौन है? हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, आपका स्वागत है। कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है? हेलो हेलो, किसी वजह से इनकी लाइन कट गई। हेलो, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे आपका। और अगर ये गीत आपके पसंदीदा गीतों में से है तो ज़रूर हमारे साथ फिर से जुड़े और बताएं कि हाँ, इस गीत को आप सुनना पसंद कर रही थी या रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ स्वर्ग से सुंदर, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ स्वर्ग से सुंदर, और इसे आनंद बख्शी ने लिखा। सुनते हैं इस गीत को। और कार्यक्रम तो आप जानते ही हैं, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आज से 9 संचिता के साथ 107 FM रेनबो पर।

0: वो तो मैंने झूठ बोला था, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे साथ है कोई। हेलो, नमस्कार। हाँ, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं हावड़ा से सुप्रिया बोल रहा हूँ, बीच में लाइन कट गया।
0: ओह, अच्छा, सुप्रिया जी, ये बताइए कि वो गीत जो मैंने अभी बजाया, क्या ये गीत आपको पसंद है?
1: बिल्कुल पसंद है, तभी तो सुन रहा है।
0: हाँ, तभी सुन रहे हैं, बाकी सब भी सुन रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि मैंने पूछा था कि अगर कोई ऐसा या ऐसी कोई है जो, या फिर ऐसा कोई है जो इस गीत को पसंद करे तो वो फिर दोबारा जुड़े। आप जुड़ गई। हाँ बताइए, कुछ और सुनना पसंद करेंगी या यही गीत सही है?
1: ये गीत सही है, जो भी हो सके तो लाल दुपट्टा मलमलका से एक मतलब फेवरेट फिल्म है, फिल्म में एक गाना सुना दीजिएगा।
0: जरूर। किसे सुनाना पसंद करेंगी?
1: सभी सुनेंगे।
0: सभी सुनेंगे।
1: आप जब आती है तो हम तो उम्मीद रखते हैं एक गाना सुनने के।
0: बिल्कुल।
1: और आप भी सुने।

0: मैं आपकी उम्मीद पर खड़ी उतर रही हूँ या नहीं उतर रही हूँ?
1: उतर रही
0: है। ओके।
1: आरत बतवाना चाहता हूँ जो गाना सुन रही है सब अच्छी है, सब सुनेंगे, और आप जब आती है तो हम तो आपको भरोसा करते हैं, मुझे गाना जरूर सुन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: इसी तरह प्रोग्राम को आगे बढ़ाइएगा, हम हमारे साथ हैं।
0: थैंक यू, बिल्कुल साथ रहिए। हमारे साथ थी सुप्रिया जी, और सुप्रिया जी की जो दूसरी पसंद है, क्योंकि वो दो दो बार लाइन मिलना भी एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते ना, ये एक तकदीर कह सकते हैं कि हाँ रेडियो में दो बार लाइन मिल गया। 107 FM रेनबो से जुड़े हुए आप, कार्यक्रम है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, आज से 9 छायालोक के अंतर्गत। अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा इस गीत को और संगीत से सींचा आनंद मिलन ने, फिल्म का नाम लाल दुपट्टा मलमल का। आठ बजकर 16 मिनट आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहकर। फिलहाल तो साजना जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ज़रूर आ चुके हैं टेलीफोन लाइंस पर, हम पूछना चाहेंगे। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग आपका भी।
1: मैं मोनिरुद्दीन लस्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण शांकाइल हावड़ा से।
0: स्वागत है मोनिरुद्दीन जी आपका इस कार्यक्रम में, और बताइए कि आप कैसे हैं और क्या सुनना पसंद करेंगे।
1: मैं तो अच्छा हूँ।
0: हाँ जी,
1: लेकिन दो चार बात बोलना चाहता
0: हूँ। जी जी जी
1: जी। जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं।
0: बिल्कुल होते हैं।
1: जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं।
0: हाँ जी।
1: यादों में कुछ लोग खास होते हैं।
0: अच्छा,
1: जैसा आप है।
0: शुक्रिया।
1: यूं तो वो दूर होते हैं नजरों पे।
0: अच्छा,
1: तो वो दूर होते हैं नजरों पे, पर उनके एहसास दिल में पास होते हैं।
0: अच्छा, तो एक गीत के रूप में ये क्या, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ओ, आपका पता है तो प्यार झुकता नहीं फिल्म से, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जानू बहुत सोचना है। कबीर कुमार लता जी की आवाज में।
0: बिल्कुल,
1: गीत सुना दीजिए।
0: बहुत अच्छा गीत है, बहुत ही अच्छा। हमारे साथ थे मोनिरुद्दीन जी, और उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की वो है तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले। जी हाँ, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की एक कालजयी गीत है ये, जिसे सहज बिहारी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। रेनबो पर कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आज से 9, आप जुड़े हैं संचिता के साथ।
2: चमके कभी

0: प्यार झुकता नहीं है इस फिल्म से, इस कालजई एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसने सुनाया हमें वो है मोनिरुद्दीन लश्कर जी ने। तो चलिए फिलहाल कोई और है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो दीदी
0: नमस्कार, आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैंने रूप देवनाथ रानाघाट।
0: रूप देवनाथ जी रानाघाट से क्या सुनेंगे?
1: मैंने ये फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, राम तेरी गंगा मैली है ना
0: जी, और किसे सुना, कौन सा गीत है? राम तेरी गंगा मैली में तो बहुत सारे गीत है
1: उसके अंदर।
0: अच्छा
1: हाँ, मैं सुनाना चाहता है घटी गचा मधु को और दोकिन कास्पर उत्तम पाल को, ये दोनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारे साथ थे रूप जी, रूप कुमार देवनाथ जी, और इनकी फरमाइश है राम तेरी गंगा मैली से एक गीत। तो चलिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में एक गीत है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, रविन्द्र जैन ने इस गीत से सींचा। वैसे राम तेरी गंगा मैली के जो गीत है उसने रविन्द्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया है, और इस खूबसूरत गीत को डेडिकेट किया गया है रूप देवनाथ की तरफ से जो कि रानाघाट से आए थे। कार्यक्रम 107 एफएम रेनबो पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आज से 9 बजे तक चल रहा है, जो कि पहला जो कार्यक्रम है यादों की बारात के बाद। आपके साथ हूं मैं संचिता।

0: 8:37 और फिलहाल मुझे चुनना है अगले कॉलर को। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं वासुदेव बोसर पुलिया मठपाड़ा नदिया से बोल
0: रहा हूं। स्वागत है आपका वासुदेव जी, और आज फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में क्या सुना रहे हैं हम सबको?
1: राम लखन फिल्म से
0: जी
1: तेरा नाम लिया।
0: तेरा नाम लिया, क्यों पसंद है ये गीत आपको?
1: आजके हमारे बंधु प्रदीप सामंत का जन्मदिन।
0: अच्छा, इसलिए उनका नाम लेना चाहते हैं तो उन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं आप?
1: हाँ,
0: अच्छा अच्छा ओके। तो हमारे साथ थे वासुदेव जी फूलिया से, और उनके दोस्त का जन्मदिन है तो ये गीत खास तौर पर उनके दोस्त को डेडिकेटेड है। मनहार उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज, आनंद बख्शी के बोल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम 107 एफएम रेनबो पर छायालोक के अंतर्गत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, और 8:39।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक।

0: नाम तो ले लिया हमने और फिल्म राम लखन से इस गीत को आप सुन रहे थे। अगले कॉलर है हमारे साथ। हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं

0: देशी गीतों के कार्यक्रम में आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं हुआ फिल्म का गाना जो मेरे नैना सावन भादो राजेश खन्ना हेमा मालिनी का पूरा बहुत याद आने गाने का फिल्म है।
0: बहुत सारी मेमोरीज हैं आपको इस फिल्म के साथ, महबूबा के साथ, है ना? और किसे सुनाना पसंद करेंगे?
1: आप ये सुनने वाले सब आदमी को और मेरे खासकर मेरी बीबी को
0: जी,
1: खासकर पहले आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, सावन का महीना भी चल रहा है। तो हमारे साथ थे हुगली से विश्वजीत धारा जी, जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की। फिल्म का नाम है महबूबा, किशोर कुमार की जादुई आवाज, बिखेरा गया है आनंद बख्शी के बोल पर, और इसके जो संगीतकार हैं वो है वन एंड ओनली आर डी बर्मन। तो चलिए इस गीत को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा प्रमोशन ब्रेक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

फिर भी मेरा मन प्यासा, बादल बरसे भीगे द्वार, मन खोजे अपना कोई प्यार, सावन हर दिल से यही कहे, मिलन की आशा कभी ना दहे। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत फरमाइशी गीत आप सुन रहे थे, सुना रहे थे आप और हम सुन रहे थे। 8:54 और 40 सेकंड, आपके साथ हूं मैं संचिता। और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत की फरमाइश की है हावड़ा से औरूप ओधिकारी ने। उन्होंने कहा कि वो एक गीत सुनना चाहते हैं जिसकी लिरिक्स कुछ रंगत तेरी सूरत सी, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत के बोल लिखे, शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया। तो इस कार्यक्रम का आखिरी गीत इसी के साथ इजाज़त दीजिए संचिता को। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम में। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और ऐसे ही गीत सुनते रहे। फिलहाल ये गीत आखिरी गीत इस कार्यक्रम का। आज हमारे साथ जुड़े सुप्रिया जी, मोनिरुद्दीन जी, रूप देवनाथ, वासुदेव फूलिया से, विश्वजीत धारा और अधिकारी।

0: 90s Gaming Zone.
1: 90s Gaming Zone. 90s Gaming Zone.
2: সৌমিক আর সুনন্দার সঙ্গে তুমি শুনছো নস্টালজিক 90s। এখন তোমাকে শোনাবো বলিউডের এক বিখ্যাত সিনেমার ডায়লগ। তুমি আইডেন্টিফাই করো এই সিনেমার ডিরেক্টরকে, আর চটপট নিজের নাম আর লোকেশন সহ পাঠিয়ে দাও 9903653992 এই নাম্বারে।
3: Oh, forget it. Anyone named Rahul? प्यार क्या है?
4: प्यार प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है। ओके मिस ब्रिगेंजा।
3: ओके राहुल, व्हाट एन एब्सोल्युटली डिलाइटफुल थॉट। प्यार दोस्ती है। लव इज फ्रेंडशिप। हैव यू हर्ड दैट क्लॉज? थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एब्सोल्युटली डिलाइटफुल आइडिया विद अस। प्यार दोस्ती है। लव इज फ्रेंडशिप।
1: 90s गेमिंग जोन।
0: 90s gaming zone.
1: 90s gaming zone.
0: 90s insta choice.
1: 90s

0: 90s Gaming Zone. 90s Gaming Zone. 90s Gaming Zone.
1: সৌমিক আর সুনন্দার সঙ্গে তুমি শুনছ নস্টালজিক 90s। এখন তোমাকে শোনাবো বলিউডের এক বিখ্যাত সিনেমার ডায়লগ। তুমি আইডেন্টিফাই করো এই সিনেমার ডিরেক্টরকে, আর চটপট নিজের নাম আর লোকেশন সহ পাঠিয়ে দাও 9903653992 এই নাম্বারে।
2: Oh, forget it. Anyone in Rahul? प्यार क्या है?
3: प्यार प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है। ओके मिस ब्रिगेंजा।
2: ओके राहुल, व्हाट एन एब्सोल्युटली डिलाइटफुल थॉट। प्यार दोस्ती है। लव इज फ्रेंडशिप। हैव यू हर्ड दैट क्लास? थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एब्सोल्युटली डिलाइटफुल आइडिया विद अस। प्यार दोस्ती है। लव इज फ्रेंडशिप।
0: 90s गेमिंग जोन।
4: 90s गेमिंग जोन। 90s गेमिंग जोन।
0: 90s इंस्टा चॉइस।
4: 90s

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।